नमः। ओम श्री साई आनंददाय नमः। ओम श्री साई आर्तत्राण परायणाय नमः।

ओम श्री साय साधु मानस परिशोधकाय नमः। ओम श्री साय साधकानुग्रह वटवृक्ष प्रतिष्ठापकाय नमः। ओम श्री साय सकल संशय हराय